0: किसने तमाम बने दे बाहर जो माता से रहता थे फल नो नहीं बोले अफेयर का जो वाता साउदी बाकुंडा से नो पूजा बत्ती में पिसन
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.